0: ओ जीतिया वेरी पाजी ते पाची पाई जांदे ने ओ किन्ना चिर चुप बैठेगा
1: ओ हुण ता सारे मोढ़ियां उत्ते थुकदे आ
2: ओ पिंदे चक ले दिनाली पर देखदा की आ
3: ओ चलो सारा जाना कर लिया
2: जानी सी पकड़ के जानी सुकदा।

जदों चमकौर दी गड़ी छड़ के आए रात दे हनेरे विच तुरदे तुरदे पातशाह माछीवाड़े दे जंगल विच पहुंचे। जामा लीरो लीर है

सिंघां नूं तैयार कर करके भेजदे रहे। इस तो पहली रात वह भी घमासान युद्ध दे विच ही बतीत होई। आनंदपुर दे विच भी साहब जी नूं कोई किसी प्रकार का आराम नहीं मिलिया। किन्ने ही दिन तो बेआरामी और उनिंद्री की अवस्था माछीवाड़े की जंगल विच पहुंचे ने आराम करन दे वास्ते। आप टीम का सराहना लैके भुंजे ही लेट गए ने। मखमला ते सौण वाला अज धरती का विछाउणा करके टीम का सराहना लिया होया है। विश्राम अवस्था विच लेटे हुए ने गुरु कलगीधर पातशाह। राही एक तुरिया आउंदा वेखिया, दूरों इसने नजर भर के कौन है इस बयाबान जंगल दे विच टीम का सराहना लिया होया, बेपरवाही दी नींदर सुत्ता होया, कौन है? नाल ही अंतर ख्याल उत्पन्न होया, इस तरह जापदा है कोई नूरानी जोत इस जंगल दे विच आके विराजमान हुई है। इंज जापदा है कोई बेपरवाह, कोई बादशाह दा बादशाह इस जंगल दे विच भाग लाने वास्ते आया है। इन्हां चंद लाइनां दे विच कवि ने अपने ख्यालातां दा प्रगट

प्रिय बंधुओं, इस कैसेट टेप द्वारा हम दिवाली के अवसर पर होने वाला श्री लक्ष्मी पूजन संपूर्ण विधि विधान द्वारा करने जा रहे हैं। आइए आप भी अपने परिवार कुटुंब समेत इस लक्ष्मी पूजन में सम्मिलित हो जाइए। इस कैसेट टेप के दोनों ओर प्रोग्राम में जो कुछ शामिल है इस प्रकार है। पूजन में काम आने वाली सामग्री और पूजन का विधि विधान, संकल्प, कलश स्थापना, गणपति पूजन, नवग्रह पूजन, खोड़श मात्री तथा लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा और अंत में श्री लक्ष्मी जी की आरती का गायन किया गया है। सबसे पहले आप पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। दो बड़े थाल, एक मिट्टी का घड़ा या बड़ी पीतल की अथवा तांबे की गड़बी, एक दरमियानी गड़बी, दोनों को या मिट्टी के घड़े को एक बार धो के शुद्ध जल से भर लें। एक थाल में रोला, चावल, फूल, मौली, केसर, पान पत्ते, मिश्री, मिठाई, लौंग, इलायची, धूप दीप आदि रखें। दूसरे थाल के मध्य में गणेश बनावें, बाई ओर ओंकार, दाहिनी ओर श्री तथा ऊपर की ओर नवग्रह के लिए 9 बिंदु तिलक तथा नीचे की ओर खोर्श मात्री के लिए 16 बिंदु तिलक पंक्तिबद्ध लगावें। हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट रखें। एक छोटी टोकरी फलों की तथा ऋतु अनुसार फूल और फूल माला तथा मिठाई का डिब्बा भी पास रखें। यदि आप पूजन अपने कारोबार, व्यापार, दुकान या दफ्तर के लिए कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपनी डे बुक, कैश बुक, लेजर तथा कलमदान और गल्ला या सेफ आदि भी साफ सुथरा करके पूजा के योग्य बना लें। अब सारा परिवार नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर घर के एक कोने में जहां पूजन करना हो बिछाई करके बैठ जाएं। एक सिंहासन बनाकर उस पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर जो भी मिल सके विराजमान करें। पूजन के समय चांदी का 1 रुपया नवग्रह वाले थाल में रखें, क्योंकि रुपया और पैसा ही लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है तथा कुछ रुपए और खुले हुए पैसे भी अपने पास रखें। बाजार से लाई गई हथड़ी में फुल्लियां, अखरोट, मिठाई आदि भरकर सामने रखें। हाथ में चावल लेकर देवी देवताओं का ध्यान कर उनके सम्मान सत्कार में श्रद्धायुक्त ध्यान लगावें तथा हो सके तो बोलें, ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, पृथ्व्यै नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। अपने हाथ के चावल पूजा मंडप के ऊपर छिड़क दें। अब शुद्ध जल दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर उसका आचमन करें और आचमन पानी के 3 हिस्से बनाकर करना चाहिए। ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। अब शुद्ध जल से हाथ को धो ले में, फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर चावल, फूल पत्तियां, जल और दक्षिणा के पैसे लेकर बायां हाथ सीधा दाएं हाथ की हथेली पर रखें और संकल्प करें।
विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु हरिओं तत्सद्य श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त एक देशांतर्गते अमुक देशे भारत देशे अमुक पुण्य क्षेत्रे पंजाब क्षेत्रे अमुक ग्रामे अपने नगर का नाम लीजिए। बौधा अवतारे अमुक संवत्सरे 2044 संवत्सरे अमुक मासे कार्तिक मासे शुभ तिथौ चतुर्दशम्याम अमुक वासरे गुरुवासरे अमुक गोत्र प्रवर विशिष्टो अमुक नामाहम। अब अपने अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कीजिए। मम कायक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार्यर्थे स्थिर लक्ष्मी प्रीत्यर्थे श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे सर्वार निवृत्ति पूर्वक सर्वाभीष्ट फल प्राप्त्यर्थे व्यापारे लाभ्यर्थे गणपति नवग्रह कलशादि पूजन पूर्वकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती लेखनी कुबेरादि नाम च पूजनम कृष्ये। अब अपने हाथ की सामग्री भूमि पर छोड़ दें। अब आप अपना सारा ध्यान नवग्रह पूजन के लिए बनाए गए थाल के ऊपर लगाएं। थाल के बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाया गया है, उसके ठीक बीच में थोड़े से चावल और फूल पत्तियां बिछाकर एक काठी सुपारी के ऊपर मौली लपेटकर उसको गणेश जी का प्रतीक बनाकर गणेश जी स्थापित करें तथा अब सब लोग अपने बाएं हाथ की हथेली पर चावल ले में कुछ फूल मिलाकर और दाहिने हाथ से ढककर अपनी आंखें बंद करके ध्यान मगन होकर स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें। ओम श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षेयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोर्धा

भवति ही। ओम गणानांत्वा गणपति घ्वं हवामहे, प्रियानांत्वा प्रियपति घ्वं हवामहे, निधिम्नांत्वा निधिपतिं घ्वं हवामहे, वसोमं आहमजानी गर्भध्वं आत्वं जासि गर्भधम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो, ब्रातेभ्यो ब्रात्पतिभ्यश्च भो नमो नमो, गृत्सेभ्यो गृतस्पतिभ्यश्च भो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो। समुच्चै दंतश्च कपिलो गजकरण कहा, लंबोदृश विक्टो विघ्नाशो विनायक, धूमर केतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशै तानि नामानि, या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भो गणपति देव इहाति सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजां ग्रहान। अब सब लोग अपने हाथ की सामग्री थाली के मध्य में विराजमान गणपति गणेश के ऊपर विसर्जन कर दे में तथा पूजा के सामान की प्रत्येक वस्तु को हाथ लगाकर ऐसी प्रार्थना करें। भो गणपति देव इहागच इहितिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजाम ग्रहाण, अहम त्वम पूजनार्थे आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनम स्नानम वस्त्रम उपवस्त्रम मधुपर्कम आभूषणम रक्तचंदनम कुंकुम अक्षत पुष्प पुष्पमाला तथा शुद्ध दुर्वा सुगंध तैल तथा

कलश स्थापन के लिए जो भी आपने चुना हो, मिट्टी का घड़ा अथवा पीतल या तांबे की गड़वी, उसमें शुद्ध जल भरकर और दोनों हाथों से उठाकर पहले उसका भूमि स्पर्श इस मंत्र से करें। ओम भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनाय धरत्री पृथ्वीं यच पृथ्वीं द्रिहि पृथ्वीं मा हि असीहि। अब कलश स्थापना के लिए अति उत्तम रहेगा यदि आपने दशहरे के मौके पर अपने घर में धान की खेती बीजी हो, उस पात्र को उठाकर सामने रखें तथा कलश धान की खेती के ऊपर स्थापित करें। सप्त धान्य पर कलश स्थापन करने से पहले यह मंत्र बोलें। ओम आजिग्र कलशम महया त्वा विशंति विन्दवः पुनरुज्जानि वर्तस सानः सहस्रन दुक्षवोरुधारा पयस्वती पुनरम्मा विशताद्रयी। अब कलश के जल में शुद्ध जल की धारा दोनों हाथों से छोड़ते हुए यह मंत्र बोलें। ओम वरुणस्य उत्तमनमसि वरुणस्य सकंभ सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋच्छदन्यसि वरुणस्य ऋच्छदनमसि वरुणस्य ऋच्छदनमासीत्। ओम कलश कुंभाय नमो नमः। तथा अब कलश के जल में कुशा या

और भरत से मिला रहे हैं सबको कि देखो इन सब ने वनवास में हमारी बड़ी सहायता की। और जब परिचय कराया

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टीरियो पर और 100.6 एफएम पूरे यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डेप पे सुनना चाहें तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स आप सुन सकते हैं और वेस्ट लंदन में लॉन्च हो रहे हैं जनाब 2nd of September को। आप लंदन में भी आप हमें 2nd of September आफ्टरनून में सुन सकेंगे। और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप हमें सुन सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं संडा रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर आप बाखूबी सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक, मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निश्रियात को सुन रहे हैं।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स 119-21-21 ओक लेन Bradford 9. Call 01274 056 014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज में। तो दोस्तों चलते हैं, अब टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 11:16। तो अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और आप जनाब हमेशा प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और साज निभाते हैं, तो आपके नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात जो शुरू में जब मैं इंट्रोडक्शन की तो आपको बताया कि हम जो सनराइज रेडियो है वो लंदन में भी 2nd of September को मिड डे 12 बजे के बाद, जब भी 12 बजेंगे मिड डे में, तो आप सनराइज रेडियो को वहाँ लंदन सुनना शुरू कर देंगे 2nd of September को। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद के सनराइज़ जो है वो लंदन भी पहुंच गया है। आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के तावन से और आप दोस्त जो हैं उनकी वजह से सनराइज़ कितना बड़ा हो गया है। और इसी तरह हमारे साथ तावन जारी रखिएगा, हमारे साथ साथ रहिएगा, देखिएगा हम कहां कहां तक पहुंचते हैं। तो जनाब याद रखिए, लंदन को 2nd of September को हम वहाँ भी मिड डे में सनराइज रेडियो को लॉन्च कर रहे हैं। तो जनाब चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत और उसके बाद आप दोस्तों से मुलाकात होती है।
2: 24 hours a day.
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300 Bradford, 7230300।
4: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए प्ले करने जा रहा हूं और आप इस गीत को एंजॉय कीजिएगा। और ये गीत मैं तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। मेरी जन्म से ये गीत सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की मत भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का आप की जानिब से आपके दोस्तों के नाम। और उसके बाद सोनिया बहन, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करूँगा। और हीरा खान साहब, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, आपके नाम भी करूँगा। और गुलाम भाई, आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करूंगा और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करूंगा। और कंवल साहब, आपके नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अब छोटा सा गीत जल्दी में प्ले करते हैं क्योंकि जो है वो वक्त कमर्शियल का होने वाला है। तो खान भाई शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आपके साथ इस वक्त फारूक भाई, मशूक भाई और दीगर दोस्त काम कर रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे। और ग़ुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे और हाजरा बहन आपके नाम भी करेंगे। और आप इस वक्त अकेली काम कर रही हैं, जल्दी प्यारी बहन सादिया जी आ जाएंगी और आपका फिर वही साथ होगा, तो घबराइएगा मत, थोड़े दिनों की बात है। अब तो मुदस्सर कियानी साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। मुना जी आपकी भी

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं। दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त जनाब एक बजकर बल्कि आप 46 मिनट हुआ चाहते हैं, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 11। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा और वो होगा किसके नाम होगा जनाब, मुदस्सर कियानी साहब, जरीना साहबा, खान भाई, तारिक जुल्फी साहब, सोनिया बहन और चौधरी मुजफ्फर साहब और हीरा खान साहब और जनाब हमारे प्यारे दोस्त गुलाम भाई, सफीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: 24 hours a day. Sunrise Radio.
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना, दिल अपना और प्रीत भराई। क्या गाना था, यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को एंजॉय किया होगा। और आप चलते हैं जनाब एक और प्यारे से गीत की जानिब। और ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम, वैसे ये गीत जो है ना ज्यादा पसंद करते हैं मलिक इम्तियाज साहब, उनकी पूरी टीम, इकमाज

0: जी दोस्तों साथियों, उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे और म्यारी गीत पेश करने की कोशिश करूं। तो चलते हैं दोस्तों अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं प्यारे से गीत के साथ और हिट ऑफ द आवर के साथ। और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274 306666। किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहें या फिर अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें, अगर हमारे सिस्टम में हुआ तो ज़रूर आपके लिए प्ले करेंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त बहुत करीब है कमर्शियल के, और जैसा कि मैंने कहा कि जनाब हम लंदन में भी लॉन्च कर रहे हैं 2nd of September मिड डे 12 बजे हम लॉन्च कर रहे हैं सनराइज रेडियो को जनाब सितंबर को 2nd of September को। तो आप जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं लंदन में भी, वो हमें भी सुन पाएंगे। तो आप सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने सनराइज रेडियो के साथ। और अब चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:12, यानी कि 12 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और विनोद राठौर की प्यारी सी आवाजों में, और अब एक और प्यारा सा गीत आ रहा है आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं अब एक बार फिर अलका याग्निक को, लेकिन इस दफा विनोद राठौर की जगह कुमार सानू उनका साथ निभा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं प्रोग्राम के दौरान कहता रहा हूँ कि हम सनराइज रेडियो बहुत जल्द यानी कि 2nd of September जनाब लंदन में भी लॉन्च कर रहा है मिड डे 12 PM पे। तो आप को वहाँ भी सनराइज रेडियो जो है वो सुनाई देगा, और वहाँ के दोस्त भी जो हैं वो सनराइज रेडियो को सुन सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले गीत की जानिब, और ये गीत भी मेरी जानिब से आप तमाम सुनने वालों के नाम प्यारा सा गीत है, दो प्यार भरी आवाज़ों में आप सभी सुनने वालों के लिए।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब कमर्शियल का वक्त भी आ रहा है और आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कवाली भी आप दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ। तो गुरदास मान की प्यारी सुरीली आवाज़ में कमर्शियल के बाद कवाली होगी और है तो पंजाबी में नहीं है, ये हिंदी में है। तो आप दोस्तों के नज़र करना चाहूँगा और ये सभी सुनने वालों की फेवरेट है जनाब, तो इसलिए आप सभी के नाम करूँगा। नाम किसी का साथ नहीं जोड़ता हूँ, सभी के नाम करूँगा जो इस वक्त सनरा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनरा रेडियो को सुन रहे हैं। तो आपके नाम किया जनाब ये प्यारा सा गीत, तो यानी कि ये कवाली। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद कवाली सुनते हैं, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस कवाली को। गुरदास मान की प्यारी सुरीली आवाज़ थी और ये कवाली लगी तो ईरा खान साहब का भी फ़ोन आया उनके नाम की जनाब, और उसके बाद तारिक ज़ुल्फ़ी साहब का भी फ़ोन आया उनके नाम भी की, उनकी जानब से उनके दोस्त जो है मलिक इसहाक साहब उनके नाम भी करेंगे। और अब एक बहुत ही प्यारा सा गीत, मुझे अच्छा लगता है ये गीत, कभी कभी प्ले करता हूँ ये गीत में, तो मेरी जानब से तमाम सुनने वालों के नाम ये गीत और ताज जुल्फी साहब और इरा खान साहब आपके नाम। और अभी मलिक इम्तियाज साहब शुक्रिया जनाब, आप भी फ़ोन कर रहे हैं तो आपकी पूरी टीम के नाम करते हैं जिनमें जनाब आपके नाम किया था ये गुरदास मान का गीत। तो मलिक इम्तियाज साहब शुक्रिया एक बार फिर फ़ोन करने का। इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, हुमैर, बाबर और इफ़लास के नाम भी करेंगे। और इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहज़ादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए, उदित नारायण और अलका याग्निक की प्यारी सुरीली मीठी आवाज़ों में बड़ा सुरीला सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम, तो इन्जॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, हमें भी अच्छा लगता था। सीमा जी आपका भी फोन आ गया, आपने कहा आपका फेवरेट गीत है, तो आपके नाम किया जनाब, शुक्रिया फोन करने का। उसके बाद खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान, आपने फोन किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने कहा आपको गुरदास मान की कवाली भी बहुत पसंद आई और ये गाना भी बहुत आपको अच्छा लगा, तो बोलते इसी तरह के गाने लगाओ यार। तो जरूर जरूर आप सुनने वाले हूँ से ही खान भाई, तो हम ऐसे ही गाने लगाएंगे। अब टाइम चेक का टाइम आ गया है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46, यानी कि 12:46 कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। और कमर्शियल के बाद आप एक बहुत ही प्यारा सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे, सीमा जी आपके नाम करेंगे, और इसके साथ साथ आप नाम करेंगे खान भाई आपके नाम, मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम, और तारिक जुल्फी साहब, हीरा खान साहब, और जनाब हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मुजफ्फर साहब और चौधरी मनीष साहब चक्की वाले। और जनाब उसके बाद हम नज़र करना चाहेंगे जो नवीद भाई हैं उनके नाम और सफ़ीउल्लाह भाई के नाम, और साथ में इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, और हाजरा बहन आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। और इकरा आपसे माजरे चाहते हैं, आपकी पूरी टीम वेट कर रही है कि उनका नाम कब आएगा, थोड़ी देर के बाद आप सबके लिए भी ज़रूर गीत लगाएंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है प्रोग्राम के हिस्से से और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे और म्यारी गीत पेश किए जाएँ। अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं तो भी हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर होगा 01274306666। और आज हमने आपको आते ही प्रोग्राम में बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि जनाब हम सनराइज रेडियो जो है वो लंदन में भी 2nd of September को जनाब लॉन्च कर रहा है। दिन के 12 बजे लॉन्च करेगा 2nd of September। लंदन में भी सनराइज आप सुनेंगे तो आप सबको मुबारकबाद जनाब, आप सबको कि आपकी सबकी दुआओं और सब का साथ था जिसकी वजह से आज हमें ये कामयाबी भी मिली और 2nd of September से लंदन में भी हम ब्रॉडकास्ट शुरू करेंगे। तो हमें मुगल साहब लीड से आपने फ़ोन किया और रफ़ी साहब की इस कवाली की फरमाइश की, तो आपके नाम करेंगे जनाब और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में जनाब मुगल साहब आपकी पसंद की कवाली। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपने कहा लेटे हुए हैं तो लेटे ना रहें जनाब, उठ जाएं आराम से, आधा दिन गुजर गया है तो रात को क्या करेंगे अगर अभी लेटे रहे तो। तो मुगल साहब आपके नाम और आप सब सुनने वालों के नाम।
1: Hit of the hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने कव्वाली सुनी और जनाब मुगल साहब लीड्स वाले जो हैं उनकी फरमाइश पे सुनी। मुगल साहब शुक्रिया, आपने फिर फ़ोन किया था, आपकी पसंद की कव्वाली लगा दी। और इसके साथ ही अब जनाब वक्त हो चुका है टाइम चेक का, तो टाइम चेक करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जनाब। तो चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:15, यानी कि 15 मिनट्स पास्ट 1। तो चलते हैं कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दोस्तों सुनेंगे गाना जनाब मुदस्सर कियानी साहब, आपके नाम करेंगे। आपने कहा था थोड़ा दुखी सा गीत सुनाना, तो जनाब ये गीत मैंने चुना, क्यों मुझे अच्छा लगता है ये गीत, तो आपके नाम भी करूँगा और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करूँगा। 3 शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, उन सब के नाम करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, यानी कि उनके नाम तो लिए नहीं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, आपके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
2: For your family treat this summer.
3: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानेब, और ये गीत मेरी जानेब से तमाम सुनने वालों के नाम, दो प्यार भरी आवाज़ें हैं जनाब, प्यारा सा गीत है, प्यारी सी शायरी है। शायरी जो है इसमें जो बोल पहले बोलते हैं वो तो ऐसे ही है, फिल्मों में ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन गाना अच्छा है, सुन लेते हैं। अभी किसी ने हमें फ़ोन किया, आखिरी तीन डिजिट हैं 903, आपका नाम रजिस्टर नहीं है, आप अभी मुझे फ़ोन कीजिएगा ताकि आपका नाम यहाँ लिख दूँ, फिर अगर आप मिस कॉल देंगे तो हमें पता चल जाएगा किसने दी है, तो आपके लिए गाना लगा देंगे। तो फ़िलहाल 903 आखिरी तीन डिजिट हैं, आपका नाम रजिस्टर नहीं है, तो दोबारा प्लीज़ फ़ोन कीजिएगा।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों अब वक्त जो है वो हो चुका है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक मस्ती भरा गीत होगा, आप सभी सुनने वालों के नाम होगा। और जनाब वो गीत गुलाम भाई आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम, मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, मेहर, बाबर, इफराज आपके नाम, और इकरा जी आप सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए। तो आप सभी सुनने वालों के लिए ये गीत होगा। तो चलते हैं जनाब अब कमर्शियल की जाने में, कमर्शियल के बाद गीत सुनेंगे, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। और प्रोग्राम का ये आखिरी आवर है जनाब, 2 बजे तक मेरा और आपका साथ है, और कोशिश होगी 2 बजे तक आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। तो ज़रूर साथ निभाइएगा, साथ दीजिएगा, और अगर प्रोग्राम में शमूलियत करना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, और उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, दीवाना फिल्म से लिया हुआ गीत था, आप दोस्तों के लिए पेश किया। और अब कोई गीत नहीं होगा जनाब, गीतों का सिलसिला यहीं रोकेंगे क्योंकि वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का वक्त हो चुका है। तो चलेंगे दोस्तों, सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: इस पे
2: जी दोस्तों, अभी आपने जोर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44, यानी कि 1:44, तो अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा। हीरा खान साहब आप फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का। और ये जो आखिरी तीन डिजिट हैं 903, आपने फिर मिस कॉल दी, आप का नाम रजिस्टर नहीं है, आप बात करें, नाम बताएं ताकि मैं आपका नाम यहाँ लिख दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब मिस कॉल दें तो आप के लिए गाना लगा दें। तो जनाब हीरा खान साहब, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब, मुग़ल साहब लीड से, मुदस्सर कियानी साहब और ग़ुलाम भाई और हजरा जी और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम ये पुराना सदाबहार लता जी की आवाज़ में गीत होगा। तो आप सभी दोस्तों के नाम, सफ़ीउल्लाह भाई आपके नाम भी।

दोस्तों अभी आपने लता जी की प्यारी सुरीली आवाज में जनाब ये गीत सुना, बहुत ही प्यारा गीत था और ये मुमताज़ पे फिल्माया गया और धर्मेंद्र कोई वो गा के बता रही थी कि ये बात है। तो दोस्तों अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो अख्ताम पसीर हुआ जाता है, उम्मीद रखता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप साथियों को पसंद आया होगा। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, जो दोस्त शुरू से हमारे साथ थे आखिर तक हमारे साथ रहे उनके तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ जब कल मुलाकात होगी तो भी आप हमारा साथ निभाएंगे। तो दोस्तों मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ कल सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगवान एंड गुड बाय।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

0: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाजों पर मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

0: attention, you know what? And I think we just all need to calm.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

बाहर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में, और आप के जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफ़े हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाए। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को इंजॉय कर सके आपके साथ साथ।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: पता ना उस घूसखोर थर की बुढ़िया से कि वो सारी बिना तेल की लालटेन है।
5: ओए ओए ओए

हाँ जी, आप सुन रहे हैं गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे, और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आया ने खुश आमदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

आज का साथ और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
1: गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com. क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
1: चाचा केड़ा चाचा
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935

0: अरे हम धन को लूटे हा, अरे वो मन को लूटे हो, अगर माने वो गोरी करे हम मिलके चोरी, डूब रहे हम दोनों की जोड़ी,
1: गोरी हो चोरी।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।